राम कहे स्तंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको साथ सुमावे रे कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाए ले प्राचित जाहे नाए ले प्राचित जाहे नानक तो मखंत्र पाहे जुज मह जोर शलि चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जाद गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया कल मह बेद अथर्पण हुआ नाम कदाई अलोह भया नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सचार पढ़े गुण है तीन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तौ नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु बिट हो।

तक नाकी वे तगा पैवत बटक तग बरक तैले पहाड़ करे भी आहो कड़का गल दसे राहो सुन वेखो लोका एहो बिडान मन अंधा मन अंधा ना सुजान पौड़ी साहिब हो।

0: मन का सूतक लोभ है जेह वासुतक कूड़, अखी सूतक वेखना पार त्रै पार धन रूप। कन्नी सुत कन पै लायत बारी खाहे, नानक हंसा आदमी बते जमपुर जाए महला पहला।
1: सबो सुतक परम है दूजे लगे जाए, जम्मन मरना हुक्म है।

0: गए मशक्कत कान, नानक ते मुखे उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है। जिस डिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै, घर नौ निधि आवै ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसा

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर भरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत किह अचल मूरत अन भाव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहि साहन गणिजै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत भन तृण कहत तय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम भरनत सुमत जब लो नहीं पागल लारी उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो काल घोर समुद्र में बूढ़त थे कब हो मिट है नहीं रे पछताया तत् विचार जह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जो न घर बनाया सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है जब लग जो बन सास है तब लग एह तन देह बिन गुण काम न आवई टह टेरी तन खेह मेरे मन लैलाह कर जाहे गुरमुख नाम सलाहिया हौ मैं निवरी पाहे सुन सुन घंडन घंडिया लिख पढ़ बुझ पार तृष्णा अहन से अगली हौ मैं रोग विकार ओह वे परवाह अतुलवा गुरमत की मत सार लख सियाण पजे करी लख स्यों प्रीत मिलाप बिन संगत साधन त्रापिया बिन नावै दुख संताप हर जप जियरे छुटिया गुरमुख चीनै आप तन मन गुर पह वेचिया मन दिया सिर नाल त्रिभवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से यह आए सफल तिना के कामा मेरे राम
ਨਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕਹਿ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਰ ਚਵਰ ਟੁਲਾਵਾ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ ਲਿਖੈ ਕਤਹਿ ਨਾ ਛੁਟੀਐ ਖਿਨ ਖਿਨ ਫੁਲਨ ਹਾਰ ਬਖਸਨ ਹਾਰ ਬਖਸ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਸੁਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂ

तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग किया को लुक करै जिस पत रखै आप सो भव जल तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा परधान जिसनो बल धरै जिस है जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलया सच मंत्र गोर मन धरै जिस जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलया सच मंत्र गोर मन धरै वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਭੀੜਹੁ ਮੋਕਲਾਈ ਕੀਤੀ ਅਨ ਸਭ ਰੱਖੇ ਕੁਟੰਬੈ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਿਅਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ।

गए मशक्कत कहां, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत।

0: पौड़ी बड़ी वड़ अपार तेरा मर्तबा, रंग परंग नेक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किछ जान ला, सब के तेरे वास तेरा घर पला, तेरा घर आनंद वधाए तुद घर, माण महता तेज अपना आप जार, सर्व कला परपूर दिसै जत कता, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोई दाई दाया, खेले सगले जगत, चंगियां या बुरियां या वाचे।

नायक खसम हमारे, निमख निमख निमख निमख तुम ही प्रतपालो, हम बारक तुम रे तारे।

के जान सतगुर सतपुरखा विनौ करौ गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव मोकौ राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपतास है मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जान सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मान चित वह उदम। जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मह जंत उपाए ताका रिजक आगै कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनिता कोय न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मान पाओ करिया। उडे उडे आवै सै कोसा तिस पाछै बचरे छरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया। सब निदान दास अष्ट सिद्धान ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइया तेरा अंत ना। सब निदान दास अष्ट सिद्धान ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइया तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा। सब ते आवह सब ते आवह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा। हर ते आवह संत हो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना। एक दा ते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी।
जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ ते आया जी तिनका भाओ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ते आया जी जन नानक तिन वल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनक करहे हर पूजा जी तप है जप हे बेअंता। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी। कार क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वडे अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई जो तौ भावै सोई थीसी। जो तू देह सोई हौं पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनों कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जीव जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछोड़या संजोगी मेल। जिसनों तू जानाए हे सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर वेख है जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरड़ा भई ले निवासा पानी पावक तिन्हे किया। पंक जो मोह पग नहीं चाला हम देखा तह डूबी अले। मान एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गले आ रहा। नाहौ जति सती नहीं पढ़या मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिनकी सरना जेन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा। भई प्रापत मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा किता न काम मिल साध संगत भाज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जाप ताप संजम तर्म ना कमाया सेवा साधना जानिया हर राया।

जाप ताप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा, सरण परे की राखहु सरमा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवी कबियो वाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख्यो सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर द करिया, सब वैरन का आज संगरिया। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख्यो हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मुहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेवगुण सुख दियो, सत्रन को पल मोवद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चिट्टी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, काट काट के पाट पाट की जानै। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कबहूँ, तुम मैं मिलत देह तर सबहूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आपे अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरयालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव ना पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आपे अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती।

देह वेद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, ओतपुज खान बहुर राच दीनी, कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आदे जुगादे स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगरो, दुष्ट जिते उठवात उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तोज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्याय है, ताकि काल निकट न है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छाह छ्व सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहे उबारा, जिन नार नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुखते रहा, खड़ग केत मैं सारण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी, सर्ब ठौर मोह सहाय, दुष्ट दुख ते

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आइया, शब्दो ता गावहो हरी के राम मन जिनी वसाया। कह ना

दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आ पर पूरे

वाहे गुरु चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब, तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतहे बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालस जी के बोल बल, बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। सिखा नू सिक्की दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, विसाह दान, परोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान, श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौंकिया झंडे बुंगे, जुग जुग अटल, धर्म का जयकार, बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। सिखां दा मन नीवा, मत उची, मत पत दा रख आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जिया, श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार

गुर प्रसाद नानक मत पाई सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दाई दाया खेला सगल जगत चंगे आईया बुरे आई।

तू ठाकुर पूज भगवाना, तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया। मैं मूर्ख किस दीजै, प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा। डुबदा पत्थर दीजै, हम अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत शाद बिखै बिखखा,

0: ओंकार सतनाम करता पुरख कृपा निर्वैर अकाल मूर्त जुनी सबं गुरु प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजे की तुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरु अपने त्योहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार इते चन हुंदिया गुर बिन कोर अंधार महला पहला
1: नानक गुरु ना चेतनी माने अपने सो चेत सुटे तिल बुआड़ दियो सुनी अंदर खे खेते अंदर सुटिया कहो नानक सो नहा फलिए है फुलिए है बपड़े पीतन विच सुहा पौनी।

0: विस्मात् नाद विस्मात् वेद विस्मात् जीव विस्मात् भेद विस्मात् रूप विस्मात् रंग विस्मात् नागे फिर जंतु विस्मात् पौन विस्मात् पानी विस्मात् अग्नि खेटे विडानी विस्मात् तत्व विस्मात् खानी विस्मात् साल लगे प्राणी विस्मात् संजोग विस्मात् विजोग विस्मात् पुख विस्मात् भोग विस्मात् सिद्ध विस्मात् साला विस्मात् उजड़ विस्मात् रहा विस्मात् नेड़ विस्मात् दूर विस्मात् वेखे हाज राजू वेख विडारिया विस्मात् नानक पूजन पूरे भाग महला पहला
1: कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पा तालियां कासी कुदरत सर्बिया कार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सन विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत दी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान बेमान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत दिखा सब तेरी

0: दुख दारू सुख रोग भया जस ताम न होई। तू करता करना मैं नहीं जाऊं करी न हो बलहारी कुदत वस्या तिरंत न जाई लख्या रहाओ। जात में जो जोत में जाता कृपला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब से सवालियो जिनकी तीसो बार पया। कहो नानक करते क्या बाता जो किश करना सो कर रहा महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेय।

0: ब्रह्मा विष्णु श्रेष्ठ अगंत तिनको मोह पया मन मदका चौरासी लख जोन उपाय रिजक दिया सबू को तदका सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका।
1: सतगुर नानक भगत करी इक मान तन मन तन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूरत जितारी अगम ज्ञान।

ताज परम करम बेदन खेद राम नाम लेही गोर प्रसाद जान कबीर राम कार सनेही ताज परम करम बेदन खेद राम नाम लेही गोर प्रसाद जान कबीर राम कार सनेही वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की